0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply. बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

से परी, ये सुबह मस्त भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे

जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिब तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहण जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोलख होवें लख होवें लखवीस। लख

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Gargels Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gargels Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Gargels Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
0: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल આટલો પ્રોટેક્ટેડ।
8: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે।
9: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો,
10: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
8: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈ ની જાન માં। હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટન માં ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટક નું નામ યાદ રાખજો।
11: बवाल लक्ष्मी बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
12: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
13: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
14: भाई, निकाल माइक।
15: भाई माई के कितना सुंदर।
6: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV।
0: Like a radio network, proud hospitality partner, Ragasan।
16: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
17: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Yeah Yavo only on Like a Gold.

0: ये है
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, balle balle! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934
5: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
9: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
10: Be part of a historic grand opening.
11: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold Title sponsor Watchdog Security Associate sponsor Lemfi
13: Caratino Better Ghee The healthier, low price, cholesterol free Butter Ghee alternative Caratino Better Ghee Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores Caratino Better Ghee
14: Leica Radio Network Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Sainsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07

0: to book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: London, Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Aman Trikha. Or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.
6: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
11: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाउ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
12: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
13: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
14: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
15: Gold Breakfast with Kajal on Laika Gold.

आज सुबह 6 बजे से मैं यहाँ पे एक एक्साइटिंग न्यूज अनाउंस कर रही हूँ. अगर आपने मिस किया तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज मेड हिस्ट्री वंस अगेन विद इट्स हाईएस्ट एवर लिस्टिंग फिगर्स फॉर बोथ लाइक अ रेडियो एंड लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंडन. नॉट ओनली डिड लाइक अ रेडियो लंडन एंड लाइक अ गोल्ड डिलीवर इट्स हाईएस्ट एवर रीच, बट लाइक अ गोल्ड रिमेन्ड एज अ नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन बाय अ ह्यूज डिस्टेंस. और आपको ये पता है कि लाइक अ ग्रुप नेटवर्क जो है 7 रेडियो स्टेशंस एक ही पॉडकास्ट डिलीवर इट्स बिगेस्ट एवर वंस अगेन पोजीशन ऑन द नंबर वन एशियन कमर्शियल नेटवर्क इन लंदन. बट डिड यू नो दैट बिहाइंड एवरी वॉइस ऑन द रेडियो देयर्स अ जर्नी दैट मोस्ट पीपल नेवर सी. पीपल ऑफ्टन सी द स्माइल. आप हमारी फोटोग्राफ्स जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं आप देख सकते हैं हमारी स्माइल, हमारी माइक्रोफोन और रेडियो में हमारी जो आवाज़ है आप सुन सकते हैं कि हम कितने खुश हैं. You can hear the great music and see the glamour as well. But what you don't actually see is the 4 o'clock alarm. Subah subah. Getting ready before the rest of the world wakes up. The 1 hour long drive to the studio. Presenting for 3 to 4 hours with energy and positivity. Never mind what goes on at home right now. Then the journey back home to continue the rest of the day. And to be honest, that's true of almost every profession. Every job has its unseen challenges, sacrifices and dedication, and we rarely see what happens behind the scenes. But here's the beautiful part. We love it. This isn't just a job, it's our passion, it's our purpose and it's our gift. Every early morning is worth it because we know we're sharing a small part of your day. Whether you're driving to work, making breakfast, dropping the children to school or simply enjoying your morning coffee, thank you for allowing us to be part of your daily routine. आपकी जो messages है ना, आपकी जो support है, आपकी जो company है, that's what makes these early starts worthwhile. So whatever your profession is, whatever it is, don't let it just become a job. Make it yours, own it, take pride in it. Every step of your journey has helped shape the person you are today. And that's something no one can take from you. So once again, thank you for letting us be part of your daily routine. It's such an honor. Thank you once again.

0: Rajan's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Ye hai
2: Laika Gold
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.
8: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th of September एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
9: Bharti Vidya Bhavan proudly presents Summer Showcase 2026, a spectacular celebration of Indian classical music and dance at the Harrow School. Join us on Saturday, 8th August from 3 p.m. for an unforgettable afternoon of artistic excellence. Book now at bhavan.net or call 0207-381-3086. Bharti Vidya Bhavan Summer Showcase 2026. Get your tickets today.
10: Radio Partners like a Radio Network.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com। ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक परी थी।
1: क्या?
0: एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका।
1: क्या?
0: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ।

केतु, अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Dad.
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel ki दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
0: Bharti Vidya Bhavan proudly presents Summer Showcase 2026, a spectacular celebration of Indian classical music and dance at the Harrow School. Join us on Saturday, 8th August from 3 p.m. for an unforgettable afternoon of artistic excellence. Book now at bhavan.net or call 02073813086. Bharti Vidya Bhavan Summer Showcase 2026. Get your tickets today.
6: Radio partners like a radio network.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
4: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 6 तारीख और एक और मनोरंजन प्रोग्राम। माय नेम इज रवि शर्मा। सबसे पहले आप सबकी ओर से शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद कहें काजल को। शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक गीतों का खजाना खुलेगा और आज भाई थोड़ी सी डिफरेंट चाल चलेगा ये प्रोग्राम। कुछ एक दर्द भरे गीतों को स्थान मिलेगा। ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हो चुके हैं और बहन भाइयों आपकी इजाजत हो तो हम अपनी डायरी खोलें और शायरी बोलें। आज दर्द की पहचान, हाहें, आंसुओं, इंतजार, शिकायतें, वो सब कुछ सिमट कर शायरी में समा जाएंगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ये दर्द जगह बना लेता है। मुझको खबर नहीं थी कि ये सयाद करेगा, पर काट के मेरे मुझे आजाद करेगा। पंख काट के मेरे, पर काट के मेरे मुझे आजाद करेगा। तेरी खुशी के वास्ते कुछ भी न क्यों कर ले, तू जब भी करेगा मुझे नाशाद करेगा। न जाने तेरे दर्द के रवैये के बावजूद, तेरे ठंडे और सर्द रवैये के बावजूद, उम्मीद नहीं थी कि मुझे तू बर्बाद करेगा। लेकिन एक बात दावे से कह सकते हैं कि इस दर्जा मोहब्बत किसी दीवाने ने तुमसे ना पहले की होगी और ना मेरे बात करेगा।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica.
0: इस दर्जा मोहब्बत किसी दीवाने ने तुझको ना पहले की होगी और ना मेरे बाद करेगा।
4: हम

0: बात तो सही है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो प्यार और गहरा हुआ है, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, और इससे पहले जिस गीत से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, स्वर्गीय मुकेश का स्वर था, दूल्हा दुल्हन था फिल्म का नाम, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। भाई हर किसी को वैसे ये दावा करने का साहस होता है हर किसी में कि भाई वो जितना प्यार करते हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता, जबकि वो खुद ही उससे ज़्यादा किसी और को कर चुके होते हैं। चलिए चलिए थोड़ा गंभीर हो जाइए, आज हंसने वाला दिन, हंसने हंसाने वाला दिन नहीं, वो बुधवार को होता है, लेकिन आज भी बीच बीच में भाई कोई ऐसी चटपटी बात आ गई तो ठहाका गूंजेगा। लेकिन आज दर्द भरे गीतों को सुनवाएं तो साहब कैसे सुनवाएं, क्योंकि लोग कह रहे हैं आज तो शोर मचाने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, क्यों? क्योंकि भाई फिगर्स बहुत अच्छी आई हैं लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी स्टेशन की, श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे स्टेशंस बढ़ रहे हैं, प्रेजेंटर्स बढ़ रहे हैं, स्टाफ बढ़ रहा है, हाँ पैसे भी बढ़ रहे होंगे जरूर, इनकम भी बढ़ रही होगी भाई पक्का। बधाई हो भाई, श्रोताओं की बदौलत ही ये सब होता है, तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ The pound is performing against Indian rupee.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 127.85 rupees for one pound. That is Indian rupees. 127 rupees aur 85 paise. Bharat bhijwana chahe to you can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Sad

0: पूरे 3 घंटे के शो में भाई ये गीत यानी इस गीत पर कमलेश का डांस जो है वो शो की अट्रैक्शन होता था। और इसमें भाई वो देवानंद वाला जो भाग है वो मैं परफॉर्म करता था ज्वेल थीफ फिल्म में। ये गीत लंबा गीत है लेकिन इसमें भाई म्यूजिक ज्यादा है और उस म्यूजिक पर वो डांस परफॉर्म करती थी, क्विंटल क्विंटल के झटके लगाती थी भाई। सीट पर बैठे बैठे लोग उछलते थे, तालियां बटोरते थे हम। लता मंगेशकर और भूपेंद्र की थोड़ी सी आवाज़ है जिस पर मैं परफॉर्म करता था, लेकिन स्टेज पर हिलना डुलना और भाई वो अभिनय करना वो तो लोगों को जो है भाता ही था, लेकिन कमलेश का डांस सबको मस्त बनाता था।
1: होटो में ऐसी बात।

0: पैरा मधुर यादें जुड़ी इस गीत के साथ। भाई तीन तीन शो रोज के हुआ करते थे और डिफरेंट डिफरेंट शहरों में हमने परफॉर्म किया। फंड्स जुटाते थे हम कभी किसी चैरिटी के लिए, कभी किसी ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन टिकटें बिक जाती थी और कभी कभी हाउसफुल होता था। अजाब एक के बाद एक शो, यानी बीच में एक शो देख कर लोग निकल रहे हैं दूसरे शो के लिए अंदर आने वाले, उस बीच में जितना तो अंतराल मिलता था उसी में हम जलपान करते थे, उसी में हम दोबारा से अपने आप को मेकअप करके रेडी होते थे अगले शो के लिए। पर वो यादें याद रहेंगी साहब। पैसा कमाने के लिए शर्मा जी ने भाई बहुत पापड़ बेले हैं यूं समझिए। गीत खत्म हुआ, समय हो गया है समाचारों का, और खबरों में आज देखते हैं क्या है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। यूक्रेन ने रूस के यारोस्लाव शहर में मौजूद एक बड़ी तेल रिफाइनरी समेत दो रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया है। उस इलाके के गवर्नर मिखाइल ने दावा किया है कि यारोस्लाव पर दुश्मन ड्रोन का अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है। उन्होंने बताया कि रूसी फौज ने 92 ड्रोन को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन के मलबे गिरने से 3 घरों में आग लग गई। यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यारोस्लाव स्थित स्लाव नेफ्ट यानोस रिफाइनरी और बशकोरतास्तान स्थित बशनेफ्ट नोवोइल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। भारत से आने वाली खबरों में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की आज झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। अतीक अहमद का नाम तो भाई आप भूले नहीं होंगे, वो यूपी का बाहुबली जो राजनीति में भी भाई और क्राइम में भी काफ़ी नाम कमा चुका था, और एक समय हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी कुछ लड़कों ने गोली मार के हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कानपुर झांसी हाईवे पर झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास आज सुबह करीब 11 बजे हुआ है। अतीक अहमद का एक बेटा तो पहले ही मारा गया था, ये छोटा बेटा अबान अहमद आज झांसी में एक सड़क हादसे में मारा गया है। हादसे में एक और शख्स की भी मौत हुई है और 3 दूसरे लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। खाड़ी इलाके में टेंशन के बीच सऊदी अरब जा रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ। यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 6 से 8 अगस्त तक, यानी आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी सऊदी अरब जाएगा जिसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और रक्षा बलों के प्रमुख समेत कुछ और मंत्री भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में दोनों देशों के बीच दो तरफा रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ इलाके और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। युगांडा के स्टार फुटबॉलर डेविड ओवोरी की मृत्यु हो गई है। लूटपाट के दौरान हुए वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ये हादसा हुआ है युगांडा की राजधानी कंपाला में। देश के चर्चित फुटबॉलर डेविड ओवोरी की मौत की खबर आ रही है। लोकल पुलिस के अनुसार मंगलवार को सस्पेक्ट लुटेरों ने ओवोरी पर हमला किया था और इस दौरान उन्होंने लूट का विरोध किया तो हमले की वजह से वो बेहोश हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। झारखंड में कंपटीशन एग्जामिनेशंस में कथित गड़बड़ियों के विरोध में स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो का अनशन चल रहा है। आज उनके अनशन का 5वां दिन है। उन्होंने बताया कि उनका दिमाग अभी भी सही से काम कर रहा है और वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने पर माफी मांगी है। भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज इसे भारत के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत बताया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ये भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत है। ये 140 करोड़ लोगों के नेता, प्रधानमंत्री की ताकत है। इससे साफ है कि जिसे भी भारत में कारोबार करना है उसे भारत के कानूनों का पालन करना होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया है कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है उस पर। उन्होंने इस मामले को लेकर मेटा से सवाल किया और पाबंदी लगाए जाने की वजह बताने की मांग की है। T20 में रिकॉर्ड बनाने के बाद क्या कह रहे हैं जोस बटलर? यहाँ जोस बटलर ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पर जोस बटलर ने वेस्ट इंडीज के केरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा तो साथ ही एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कुछ भी कर सकते हैं। देखता हूँ कितने दिन रहेगा मेरा ये रिकॉर्ड, क्योंकि इसको तोड़ने वाले कई बैट्समैन आगे आ रहे हैं। बटलर ने कहा कि वास्तव में यह बहुत खास एहसास है कि आपके नाम सबसे ज्यादा T20 रन हैं, लेकिन एक न एक दिन तो कोई इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ेगा और उसका नाम शायद होगा वैभव सूर्यवंशी। वैसे आपको बता दें भाई, वो जो अमृतसर वाला लड़का है ना, अभिषेक शर्मा, उसने भी अभी एक मैच में 91 गेंदों पर 233 रन ठोक डाले और वो कह रहा है कि मेरे बैट का भी ध्यान रखना। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इसराइल से मतभेदों के सवाल पर एक बयान दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि इसराइल अमेरिका का एक अच्छा पार्टनर है और सहयोगी देश है, लेकिन दोस्तों के बीच छुटपुट मतभेद रह सकते हैं, हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ब्लेयर हाउस में हुई बैठक के दौरान उनका विरोध नहीं किया था। दरअसल इससे पहले कुछ एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नेतन्याहू ने वेंस की मुखालफत की थी। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के फाउंडर इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने दावा किया है कि पिछले 60 महीनों से उन्हें अपने अब्बू से, अपने पिता से मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। दोनों ने अमेरिकी चैनल CNN से बातचीत में इमरान खान की सेहत को लेकर के चिंता जताई है। कासिम और सुलेमान ने कहा कि हमारी आखिरी बार मार्च में फ़ोन पर बात हुई थी और इसके बाद से परिवार के किसी भी मेंबर को उनसे मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं दी गई है। राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम से पहले एक विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला प्रबंधन ने 8 अगस्त को कांग्रेस के प्रस्तावित स्टूडेंट्स की गूंज कार्यक्रम के लिए KP कॉलेज के खेल मैदान का आवंटन रद्द कर दिया है, यानी वो जो बुकिंग थी वो रद्द कर दी है। कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक यानी एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और इसमें बताया है कि कॉलेज के प्राचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेश का जिक्र करते हुए चिंता जताई है कि इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह कार्यक्रम कैंसिल किया जा रहा है। और झारखंड की राजधानी रांची में JPSC, वो जो JSSC में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसके नेता रविंद्र पासवान ने कल कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करना चाहती है। हमें अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का भी चयन करना है और फिर देखते हैं, बातचीत का समय और दिन तय होने पर खबर दी जाएगी। और यूपी में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते MLA यानी विधायक उमा शंकर सिंह का निधन हो गया है। वे 55 साल के थे और लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से बीमार थे, पीड़ित थे। और आखिर में यह खबर कि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही के लिए एक नए रूट पर ओमान के साथ सहमति बना ली है, राजी हो गए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स।
0: लौट आइए संगीत की ओर, एंजॉय कीजिए किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। ले चलते हैं आपको गुजरे जमाने में, डिस्को 82, 1982 के इस गाने में।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और बहनों भाइयों, साउथॉल ट्रैवल का वो संदेश जो हम पिछले कई दिनों से आपको याद दिला रहे हैं, फ़ायदा उठाइए उनकी इस ऑफर का भाई। साउथॉल ट्रैवल इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज़ लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथॉल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है Like a Gold 10:35 AM
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: at all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Start

0: is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: लेट मी टेल यू द रेट्स, स्विफ्टली के रेट्स हैं, एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 128.13 रुपीस, पाकिस्तानी 373.27 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 450.99, बांग्लादेशी टके 166.53, अफगानी 88.42 एंड केनियन शिलिंग्स 174.11.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: सोने की कीमतों में उछाला दिखाई दे रहा है भाई. द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 102.23 पाउंड्स पर ग्राम.
0: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स. PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Mamster નું પાણી પૂરી અને પાણી પૂરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: London, Jazz Entertainment presents Bollywood Legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika.
3: Hello re, hello re, hello re, hello.
2: और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में सैटरडे 3 अक्टूबर 7 PM हैरो आर्ट सेंटर. टिकट्स अभी बुक कीजिए हैरो आर्ट सेंटर बॉक्स ऑफिस से. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल 0777-161-5800. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
4: In Dubai.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
6: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
7: Manoranjan with Ravi Sharma.
8: Shaakh se toot ke goonche bhi kabhi khilte hain, nahi na? रात और दिन भी जमाने में कभी मिलते हैं नहीं, तो फिर भूल जा, जाने दे तकदीर से तकरार ना कर. मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड के कार्यक्रम है जिनमें आप सुन रहे हैं मनोरंजन रवि शर्मा के साथ। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपके लाइका रेडियो नेटवर्क के स्टेशन जो हैं खूब लोकप्रियता बटोर रहे हैं और श्रोताओं की संख्या में तादाद में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा देर तक सुन रहे हैं। और भाई ये आपका लाइका रेडियो नेटवर्क अब दूर दूर तक पहुंच रहा है, दुनिया भर में सुना जा रहा है। तो इस उपलब्धि पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आइए अब सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से मीना और सुनीता का भेजा आलेख। मीना एंड सुनीता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी लिखती हैं कि अक्सर हम लोग इंतज़ार करते हैं कि मौका मिलेगा तो हम भी कोई अच्छाई करेंगे, हम भी कोई उपकार का काम करेंगे, हम भी किसी का भला करेंगे। अवसर का इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कोई बड़ा काम करना होगा। लेकिन सच ये है कि बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी अच्छाइयों से जन्म लेती हैं। बड़े मौके की तलाश मत कीजिए, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी अच्छाइयां, थोड़े थोड़े उपकार। देखिए जैसे किसी परेशान व्यक्ति की बात को ध्यान से सुन लेना, किसी बुजुर्ग का हाल पूछ लेना, बिना किसी मतलब के किसी की मदद कर देना, ये छोटे छोटे काम किसी के पूरे दिन को बदल सकते हैं और आपके भी दिन को महका सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों में बड़ी ताकत होती है। बोलने में थोड़ा सा मिठास, थोड़ा प्यार भर लें तो सुनने वाले का दिन बन जाता है। और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी का दिल जोड़ सकता है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प इस चिंतन में कि आप किसी के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। एक भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था, सर्दी का मौसम, ठिठुर रहा था बदन उसका, फटे कपड़ों में वो अपने आप को ढके रखने की कोशिश कर रहा था। कटोरा आगे फैला करके चेंज मांगता था, आवाज में करुणा थी, बदन में जान नाम मात्र की। तभी एक कवि, एक लेखक, कवि हृदय नवनीत समाना, संतों जैसा हृदय होता है पिघल जाता है। कवि ने जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डाला, देखा तो पैसे नहीं थे, पर्स में भी नहीं थे पैसे। आज अपने आप को कोस रहा था, एक जरूरतमंद हाथ फैला रहा है और मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। फिर कवि आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, हाथ में उसके कटोरा था, फिर भी उसने दोनों हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की और उसके गर्म हाथ और भिखारी के ठंडे हाथ, भिखारी को थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, माफ करना भाई, आज पैसे नहीं हैं। यकीन मानो
1: चिंतन, चिंतन।
0: मेरे पास पैसे होते तो मैं आज तुम्हें जरूर दे देता, कभी फिर इधर से गुजरा तो पैसे लेकर के ही आऊंगा, आज माफ कर देना। फिर उसने देखा कि भिखारी की आंखों से तो आंसू आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, आपने जो दिया है वो तो कोई देता ही नहीं है मुझे। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। दिया है ना, भिखारी ने कहा, आपने ये जो गर्माहट दी है मेरे हाथों को, ऐसे मेरे हाथों को कोई छूता भी नहीं है। लोग दूर से गुजरते हैं, पैसा देते हैं तो फेंक कर देते हैं, आपने जो अपनापन दिया है ना, ये तो कभी मिला ही नहीं। समझ में नहीं आता कि मैं कैसे आपका थैंक्स बोलूं, कैसे आपको धन्यवाद दूं। आपने जो दिया है वो खजाना है, आपने मुझे अपना माना है, आपने मुझे पहचाना है कि मैं भी एक इंसान हूं। अब कवि की भी आंखों में आंसू थे। बहन भाइयों, यही है वो जो हम किसी को भी दे सकते हैं। अपनापन, किसी के होठों पर मुस्कान, किसी की आंखों में चमक, ये अपनेपन का एहसास डेफिनेटली है आपके पास। बांटिए, दीजिए किसी को। थैंक यू मीना शर्मा एंड सुनीता शर्मा।

0: किसी के काम आना। दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए सूरज बनना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा दीपक बनकर भी आप अपने आसपास उजाला फैला सकते हैं। जानते हैं बहनों भाइयों, आज 6 अगस्त है और ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना कहीं या दुर्घटना की याद दिलाता है। 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर न्यूक्लियर बम गिराया गया था, परमाणु बम, और कुछ ही क्षणों में पूरा शहर तबाही की चपेट में आ गया था। हजारों लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद बरसों तक उसके भयावह परिणाम दिखाई देते रहे। आज उस ट्रेजेडी के आंकड़े नहीं सुनाना चाहता मैं, लेकिन सावधान या करना चाहता हूं। उसमें एक छोटी सी मानवीय घटना भी घटी थी कि उस भारी विनाश के बीच भी लोग जिससे बन सकता था, जितनी बन सकती थी, उनसे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी ने तड़पते हुए जख्मी को, अजनबी को पानी दिया, किसी ने किसी बच्चे को सहारा दिया, किसी ने अपने से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन बचा कर रखा। आज बहुत सारे देशों के पास है, कई देशों के पास है न्यूक्लियर बम, और कुछ बात में धमकी भी देते रहते हैं कि हमने ये किसी तीज त्योहार के लिए नहीं रखा हुआ बना के, पर वो बोलते हुए सोचते नहीं है। भारत के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन उसका एक वचन भी है, उसकी एक प्रतिज्ञा है कि वो पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी सिर्फ आत्मरक्षा में, अदरवाइज कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए वो न्यूक्लियर बम का, यानी उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर पहले लड़ाई में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी ने उसका अटैक किया, इस्तेमाल किया, फिर जवाब में करेंगे। अमेरिका के पास है, भाई कई देशों के पास है, लेकिन विनाश की बात क्यों करें? विज्ञान अगर तरक्की कर रहा है तो विकास की बात क्यों ना करें? किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए गीत आपने स्वर्गीय मुकेश जी की आवाज में सुना। दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म आई थिंक अनाड़ी, और भाई आलेख भिजवाया था हमें ऑस्ट्रेलिया से मीना शर्मा और सुनीता शर्मा ने। याद दिला दो आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that money you want to send to India to your friends, family members, the rate is

0: जिंदगी वहाँ सैको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
4: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02023963 5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
4: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
8: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
9: Bikaner wala parampara bhi.
10: Famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch aapka intezar kar raha hai. Milte hain 513-519 Cranbrook Road, Gansel, Ilford. IG26HA. Call 07555-506015.
11: Is mahine mera boiler lekar aaya hai pre-booking sale ka shandar mauka. Ab sabhi Bosch boilers par seedhe £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर, पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना, मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02033-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
15: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
16: TravelHub.
15: At all protected.
14: Leica. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
17: आपका ये बजा
16: ही सही के हम

0: और सॉन्ग रफी साहब की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म दोस्ती से लिया गया था भाई 1964 में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों को चोटी के संगीतकारों में भाई उन्हें उनके नाम को शामिल कराने के लिए जिम्मेदार थी ये फिल्म। तो साहब बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए, और आपको याद दिला दूं कि ये कार्यक्रम दोपहर बाद एक बजे तक जारी रहेगा। माय नेम इज रवि शर्मा एंड इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: Like our gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra podcast update.
3: और बहन भाइयों, लाइका रेडियो नेटवर्क की लोकप्रियता में जो बढ़ोतरी, ये श्रोता बढ़े हैं, इसका सम्मान बढ़ा है, मुकाम बढ़ा है भाई, उसमें थोड़ा योगदान इसका भी है जो आजकल हमारा बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, लाइका एक्स्ट्रा। लाइका एक्स्ट्रा में नया एपिसोड जुड़ गया है, एपिसोड 27, ऑनर बेस्ड अब्यूज। भाई ये कुछ ऐसी मान्यताओं को आधार बना करके जो अत्याचार किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, बच्चों को जीना उनका मुश्किल कर देते हैं, ये इस तरह की बातें हैं जो धारणा पर आधारित हैं। और ये भी डिस्कस किया है हमारे दीप राजा और हमारी खुश ने, खुशबू खुश। और भाई ये बड़ा गंभीर विषय, बर्निंग टॉपिक है, इसे ज़रूर देखिएगा आप। ऑनर बेस्ड अब्यूज इन अवर देसी कम्युनिटीज जो पाया जाता है, उसको भाई उस पर चर्चा हुई है। तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: Like our gold.
5: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
6: travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
7: Travelhub, best service with unbeatable price
6: at all protected.
7: Visit travelhubworld.com.
8: Dad,
9: what's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek परफेक्ट कप ऑफ चाय।
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
14: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
13: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
14: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

डूबे भी नहीं ठीक से न पार गए हैं, पल जिंदगी के कीमती बेकार गए हैं। बाजी तुम्हारे इश्क की थक कर समेट ली, हम हार गए हैं।

प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। वो फिल्म जिसे देवानंद ने ठुकरा दिया था, अमिताभ बच्चन को उसने सुपर हीरो बना दिया।

0: व्हाट अ सॉन्ग। हमारे दोस्त भाई कमल मॉरिशस वाले इस गीत गुनगुनाया करते स्टेज पर जब भी आते, इस गीत से प्रोग्राम शुरू करते थे। और मॉरिशस में भाई बीना जी वो भी गाती हैं और वो भी सुन रही हैं, तो भाई ये गीत उनको भी पहुंचता है। और ख़ास तौर पर ये गीत पहुंचता है हमारी बहन जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है, उनके नाम करते हैं। दो गीत बैक टू बैक संगीत के तहत हमने सुनवाए। पहला गीत था वो फिल्म जंजीर से, और भाई जंजीर फिल्म को देखिए, बड़े बड़े हीरोज़ ने ठुकरा दिया था, बोले नहीं टू मच वॉयलेंस है, टू मच। और ये फिल्म देवानंद ने भी ठुकरा दी, तो अमिताभ बच्चन से पूछा गया। अमिताभ बच्चन भाई नए नए थे, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा तो प्रतिष्ठित थी जया भादुरी, लेकिन उन दोनों ने इस फिल्म को स्वीकार किया और फिल्म को उस ऊंचाई तक पहुंचाया। प्राण भी थे फिल्म में, बड़ा ज़बरदस्त रोल था उनका। तो साहब कुल मिलाकर के सुपरहिट फिल्म हुई और अमिताभ बच्चन रातों रात एंग्री यंग मैन बन गए। तो ये गीत पहला गीत था कार्यक्रम के अंतिम दौर का। दूसरा गीत फरीदा गुलाम अली की फरमाइश पर हमने सुनवाया लहरों की तरह यादें, भाई ये किशोर कुमार की आवाज़ में निशान फिल्म का गीत था। अब गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का रेट बताएंगे, पाउंड के बदले कितने इंडियन रुपीस वो दे रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। याद दिला दूं दोपहर बाद 1 बजे तक हमारी आपकी ये मुलाकात जारी रहेगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके। Reminding, nice rate if you want to send money to India. For £1 they are giving 127.85 rupees maximum. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Send money to your people. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Durandar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
1: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823. बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
0: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once in a lifetime spiritual journey.
1: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
1: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: और बहन भाई, यो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर एंड पॉलिटिशियन एज वेल. भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध रहा है. विश्वजीत इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. हिंदी और बंगाली सिनेमा में भाई बहुत नाम कमाया इन्होंने, विश्वजीत चटर्जी. और उनकी फिल्मों के गीत भी भाई अब तक जो है गुनगुनाए जाते हैं, सुने और सुनाए जाते हैं. आर्टिस्ट ऑफ द वीक विश्वजीत, उनकी फिल्म का ये गीत सुनिए. रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज शामिल है.

0: करें।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: आओ डांस करें। डांस करना तो बनता है क्योंकि आपके लाइका रेडियो नेटवर्क ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत बड़ी संख्या में श्रोता जुटाए हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, दूर दूर बैठे श्रोताओं का अधिक देर तक सुना जाता है, अधिक श्रोताओं के साथ जुड़ा हुआ है और अधिक प्यार जुटा रहा है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क। ताज़े आंकड़ों से ये साबित हुआ है। अब आज का दिन भाई 6 अगस्त को, वैसे तो मैंने बताया कि 6 अगस्त जो है वो न्यूक्लियर बम्बारमेंट जो जापान पर हुई थी अमेरिका के द्वारा, उसके कारण 1945 में जो हुआ था हादसा, उसके कारण भाई कलंकित है, यूँ कहिए प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात कहते हैं, जो बैड रेपुटेशन उस दिन की बनी। लेकिन आज के दिन के साथ और भी कई बातें जुड़ी हैं भाई। मुझे याद आ रही हैं भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। किसी ज़माने में सुषमा स्वराज हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थी कुरुक्षेत्र में, और भाई एक बार वो हमारे कैंपस में, जब वो राजनीति में एंटर कर चुकी थी, मैं तब भी स्टूडेंट था, मैं तो बहुत जूनियर था, उनसे बहुत पीछे था, तो वो मोरारजी भाई देसाई को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें कुरुक्षेत्र लेके आई। बहुत बड़ा जलसा हुआ, तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट वहाँ थे सुनने के लिए। हम मोरारजी भाई देसाई के साथ साथ भाई सुषमा स्वराज जी को भी मंच पर देखना चाहते थे। दुबली पतली खूबसूरत और थोड़े छोटे कद की थी सुषमा जी, लेकिन भाई बोलने में दबंग, जिस तरह से उन्होंने मोरारजी भाई को इंट्रोड्यूस कराया, लगता था एक बहुत बढ़िया वक्ता रही हैं वो यूनिवर्सिटी में, इसीलिए स्टूडेंट लीडर बनी थी। और फिर वो भारत की विदेश मंत्री बनी भाई। अब आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें याद करते हैं। और जन्मदिन किसका है आज, आवाज सुनानी पड़ेगी, पहचानने की कोशिश कीजिएगा कौन है ये।
4: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस, विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।
3: चाची जी, इतनी सारी आवाजें कैसे पहचानेंगे हम जन्मदिन वाले बच्चे को। भाई इन्हीं आवाजों में एक आवाज उस कलाकार की है जिसका आज जन्मदिन है। कुछ ये टंग ट्विस्टर होते हैं ना, जिनको बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, आप बोल के दिखाएं। मैंने बड़े जुटा रखे थे, मैं लोगों से कहता था बोल के दिखाओ। हरियाणवी में शेख के बारे में सौंप सुख देख शेख सूंग सौंप सुखी सहकना, कोशिश करो फिर बताऊं। शेख के बारे में सौंप सुख देख शेख सुम सौंप सुखी सहकना, ट्राई कर लिया। एक और था बड़ा मुश्किल सा, बोल के दिखाऊं। काली चिड़िया कलमच को तेरी जीव लचा पच कलमच को, जब तने दिल में गोता मारा तो दबड़ा कर लचा पच कलमच को। चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में चटपटी चटनी चटाई। इतना मुश्किल नहीं है। आदित्य नारायण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू उदित नारायण के होनहार सुपुत्र।

0: आदित्य नारायण भाई बचपन से ही गाने लग गए थे, यानी कमाने लग गए थे। फिर संगीत तो विरासत में मिला। मुझे याद है एक बार आदित्य नारायण, उनकी माताजी और भाई उनके पिताश्री यानी उदित भाई, इन तीनों ने मेरी गाड़ी में सफ़र किया लंदन से बर्मिंघम तक। रास्ते भर में बहुत बातें हुई, सर्विसेज पर रुके भी थे, पर उन दिनों इतने फेमस नहीं हुए थे आदित्य नारायण, बच्चे थे छोटे, बहुत पहले की बात है। पर इसमें प्रमुख स्वर जो गीत आप सुन रहे हैं वो आदित्य नारायण का है। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। छह अगस्त 1987 में जन्मे थे आदित्य नारायण। एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर तो हैं ही।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: अब ये साउथ ओल्ड ट्रेवल वालों का संदेश भी बता दें आपको भाई, वो याद दिला रहे हैं आपको कि अगर दुबई की यात्रा करनी है तो आप कीजिए भाई, सारी छूट हैं। FCDO ने कह दिया है कि वो जो हमारा मशवरा था ना अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई, अब वो उठा लिया गया है, खत्म हो गया है। कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉव के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Start

मोहम्मद अजीज आशा भोसले और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। भाई एक खबर आपके साथ साझा करें, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत से सीधे मीडिया से बात की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर बांग्लादेश सरकार बड़ी नाराज है। वही इस प्रोग्राम के जरिए शेख हसीना और उनके सहयोगी ने बांग्लादेशी राज्य और देश के लोगों का कहते हैं वो बांग्लादेश सरकार का कहना है कि मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन शाकिब अल हसन भी दिखाई दिए। उन्होंने भी बात की और ये दावा किया जा रहा है कि देर रात उनके घर पर फिर अटैक किया गया। बांग्लादेश में बांग्लादेश अवामी लीग ने यह बयान जारी किया है कि मशहूर क्रिकेट आइकन शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से एक भयावह हमला हुआ है। कारण क्या कि उन्होंने पार्टी अध्यक्षा शेख हसीना के साथ हिस्सा लिया था। बांग्लादेश अवामी लीग की ओर से यह बयान जारी किया गया है। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि वो वापस बांग्लादेश लौटेंगी चाहे कुछ भी हो।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: And if you want to send money, let me tell you the rates. Why, for £1, they are giving in Indian currency 128.18 rupees, Pakistani 373.64, Sri Lankan rupee 451.95, Bangladeshi Take 166.58, or Afghani 88.48.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: गोल्ड रेट बता दे भाई, गोल्ड थोड़ा सा महंगा हो गया है, पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस गिर रही थी। टुडे इट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 101.81 पाउंड्स पर ग्राम।
2: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com, और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।
3: रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज किसे पुकार रही है? माहौल को डरावना बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, गीत की स्थिति बताई जा रही है।
5: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

मदन मोहन की अमर रचना, लता जी की आवाज, और भाई बड़े सॉन्ग। फिल्म तो साहब वो क्या कहते हैं, वो मर्डर मिस्ट्री जैसी होती है ना। कुछ फिल्में ऐसी बनी थी जैसे 20 साल बाद भी ऐसी थी। ये तो थी, वो कौन थी, एक अनीता, अधूरा हूँ मैं अफसाना।

0: मनोज कुमार, साधना, केएन सिंह, मोहन चोटी, धूमल, हेलन और प्रेम चोपड़ा। राज खोसला की डायरेक्टेड फिल्म थी। बरसे संगीतकार मदन मोहन।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ ऑगस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
2: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
3: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Koya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carry and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी।
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
13: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
12: डेजर्ट सफारी,
13: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
12: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
13: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
0: और लीजिए मेरे भाइयों, अब बाली ब्रह्म भट्ट के लिए स्टूडियो खाली करें, आपसे इजाजत लें। लिखा है भाग में तो मुकद्दर से जंग क्या, कर लूंगा सारी उम्र तेरा इंतजार मैं, कलयुग में मेरे दिल की जरा सादगी तो देख, वादे पे तेरे करके चला एतबार में। इजाजत दीजिए, हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।

0: Kosher rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
2: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
8: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208 951-0111.
9: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
11: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 line.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: South Hall. Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
5: Bikaner wala. Parampara bhi. Swad
6: bhi. बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
7: लुक, इट्स द बॉटम लिज दिस टाइम स्लाइडिंग अक्रॉस देयर कार बोनेट।
8: लीव एंड बी फिलिप, दे जस्ट क्लेम कॉन्फिडेंट।
7: क्लेम कॉन्फिडेंट?
8: यस, बाय डूइंग देयर ओन कार फाइनेंस कंपनसेशन क्लेम यूजिंग द FCA's फ्री टूल्स टू हेल्प। दे'ल कीप 100% ऑफ व्हाट देयर ओड। I've just done ours too. Come on!
7: Deirdre? Deirdre? Come back here.
9: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
10: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
11: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: शंकर जयकिशन का संगीत,
1: तुमने कभी
0: हसरत जयपुरी की लिरिक्स, फिल्म दुनिया 1968। गाना है फिल्म आस का पंछी का, इसमें सुबीर सैन गा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ।

0: फिर कहाँ तक चले, हाय हाय फिर कहाँ तक चले।
1: ये फिल्म है आस्का पंछी, 1961 की फिल्म, और शंकर जयकिशन का संगीत है और शैलेंद्र जी ने लिखा। अब जब ये सुबीर सैन जी जब गाते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि हेमंत दा की आवाज़ है, हेमंत कुमार जी की, लेकिन ये इस गाने के अंदर जब इन्होंने शुरुआत की मुझे लगा मुकेश जी, एंड देन सडनली यू रियलाइज इट्स सुबीर सैन। होप यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट इज बाजी।
2: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
1: ये कौन आया? ओ, गीता दत्त। गीता दत्त जी आ गई। फिल्म है बाजी, 1951। Enjoy.
3: ये कौन आया?
1: एस डी बर्मन का संगीत, साहिद लुधियानवी की लिरिक्स।

0: Bali Brumba.
1: All right, so it's very exciting to find out songs in which there is humming. And humming mein har ek singer ki baat nahi hoti thi wo. कुछ सिंगर्स को हमिंग के गाने दिए जाते थे लेकिन वो निभा नहीं पाते थे, डिलीवर नहीं कर पाते थे. हमिंग डज टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली. कोई भी सिंगर जैसे रफ़ी साहब वॉज द चैम्पियन इन इट, नो डाउट अबाउट इट. एंड किशोरदा सिफत से हैड ब्यूटिफुल लंग्स एंड दे वुड लिटरली पुट अ नाइस फोर्स इन टू देयर वॉइस टू गेट द हमिंग आउट ऑफ देम. And that's why most of the songs aap dekhenge, of course, Lata Ji to Lata Ji hi hai. And Asha Bhosle Ji bhi. Maine ek gana chuna hai aaj Asha Bhosle Ji ka, jo mujhe lagta hai last time 2021 mein sunai diya tha, Laika Gold pe. 2021 mein, can you believe, 5 saal pehle ye gana baja tha. Aur aaj main sunaunga because it's got humming in it. And it's a film called Farishta, 1958 ki film hai. And aapko main pure gaane jab sunaunga humming ke, aap bhi saath gungunaa sakte hain, humming kar sakte hain, maza lijiyega. They are all catchy songs, except for the Asha Bhosle song. You would have not heard it that often. Lekin Kishore Da ke gaane, फिर

0: Cheverno SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And your £1 in British sterling can fetch you up to 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the YONO SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: London walo, dhyan se sun lo, ke furniture ki dhamakedar फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना.
10: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialist.

0: कॉल 0208767214।
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
2: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
4: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
5: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
6: भाई, निकाल माइक।
7: भाई भाई के पिया कितना सुंदर।
2: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Bharti Vidya Bhavan proudly presents Summer Showcase 2026, a spectacular celebration of Indian classical music and dance at the Harrow School. Join us on Saturday, 8th August from 3 p.m. for an unforgettable afternoon of artistic excellence. Book now at bhavan.net or call 0207-381-3086. Bharti Vidya Bhavan Summer Showcase 2026. Get your tickets today.
2: Radio partners like a radio network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 0208-574-8410। साफो ट्रेवल At all protected.
4: What food में dinner plans? थोड़ा classy, थोड़ा देसी।
5: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
4: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से biryani तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
5: Friends, family या special night out, इसे यादगार बनाइए. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
6: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी,
3: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
4: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

तो इमीडिएटली उसको गाने में इतनी खूबसूरत मेलोडी में बदल देते. एंड डेफिनेटली गाना हेटी होता था. आई स्पेंड सो मच टाइम विद नदीम भाईजान. एंड व्हेन वी वर इन लंदन एंड वो मुंबई से जब ट्रिप के लिए आते थे, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंडिया में मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे. सो वी हैड अ गुड फ्रेंडशिप सिंस 1994, जब अम्मा देख गाना जो मैंने गाया था, उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत हुई थी. नाउ वो बात तो अलग है, लेकिन व्हेन ही यूज्ड टू कम हियर ही यूज्ड टू यूज माय मोबाइल. तो उस ज़माने में इतने लंबे लंबे मोबाइल जो नए नए आए थे 90s में, वो मोबाइल ही वुड यूज इट बिकॉज व्हेन ही हैड टू डू हिज बिजनेस ही हैड कम हियर बिकॉज भाभी जान वॉज गोइंग थ्रू सम ट्रीटमेंट टू हैव अ सेफ प्रेगनेंसी. And uski wajah se they used to come to London because somebody had recommended them Carnaby Street. Yahan pe jo ek doctoron ki ek specialized street hoti hai, not Carnaby, I think. What am I talking about? Carnaby is a marketplace, but there is another place there where there are special doctors opposite Baker Street. Main naam bhul gaya hun, lekin that street had specialized doctors, and he approached one of the doctors, and they had a baby boy who was born with the name Summer, who is a wonderful, wonderful young man now. And yes, how I know is because I was very close to him, and I was very close to Bhabhi Jan, and so was my wife. And my wife used to do his plane tickets. She was a travel agent, my wife, retired now. But Sheila would arrange for all the ticketing for the whole crew that used to come. Shravanji used to come, Samirji used to come, Tausif Akhtar, who used to do arrangements, Tabun, ये सब लोग आते थे अरेंजमेंट्स के लिए. वो लोग लंदन आते थे. सो द मूवीज दैट वर रिलीज्ड वर एक्चुअली कंपोज्ड ओवर हियर इन लंदन विद नदीम भाईजान. एनीवे, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन द बॉय वाज बोर्न, माय वाइफ वाज इन द हॉस्पिटल विद भाभीजान, एंड शी इज़ द गॉड मदर ऑफ समर, उनका बेटा जो है, इतनी करीबी है हमारी. सो उस टाइम पे व्हेन द बॉय वाज बोर्न, वी वर गोइंग शॉपिंग इनटू अ प्लेस ब्रेंट क्रॉस शॉपिंग सेंटर, एंड वहाँ पे गाड़ी मैंने पार्क की. इट वाज अ हॉट समर्स डे लाइक नाउ, अ सिजलिंग समर, एंड वी वेंट इनसाइड टू डू द शॉपिंग. और शॉपिंग मॉल के अंदर एक स्पीकर में गाना बज रहा था, तो इन्होंने कान पे हाथ रख दिए और बोले कि जल्दी मेरे पास, मेरे को गाड़ी पे ले चल. तो मैं गाड़ी में उनके लिए एक वॉकमैन रखता था जिसमें रिकॉर्डिंग हो सकती थी, कैसेट रख के, वो पुरानी स्टाइल का ही नो रिकॉर्डिंग हो सकती थी उसमें. तो मैंने रखा हुआ था गाड़ी में, एंड ही रश्ड टू द कार. तो मैंने सोचा कि जो ये गाना बज रहा था, दैट वॉज फ्रॉम डॉक्टर जिवागो, जो इंग्लिश फिल्म है, उसका टाइटल म्यूजिक है लारस थीम. तो वो ट्यून बज रही थी, तो मुझे लगा कि ये ट्यून में ये गाना बनाएंगे अभी. तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और एक ट्यून है, उसके ऊपर मुझे गाना बनाना है, और ये ट्यून जो बज रही है वो मेरे को क्लैश हो रही है मेरी ट्यून के साथ, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गए. तो मुझे लगा मुझे ऐसे ही बता रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया उस कैसेट पे. मैं गाड़ी में बैठा था, एंड ही हैड हिज डोर ओपन एंड हिज लेग आउट, एंड ही इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग एंड हमिंग समथिंग. एंड उन्होंने कुछ तर्स बनाई और दो चार वर्ड्स डाल दिए उसके अंदर, यू नो, एंड द वर्ड चुपके ही केप्ट ऑन रिपीटिंग, एंड ही जस्ट केप्ट इट इन द कैसेट प्लेयर. And then he went away, and then he sent that song to Samir in Mumbai and Shravanji. Unko kaha ke ye tune hogi aur ye kuch words maine rough rough words likhe hain, to Samir ji ko keh dena ke this is for Subhash Ghai's film. And lo and behold,

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Search is changing.
3: Customers aren't just using Google anymore.
2: They're asking AI.
3: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
2: One business, one recommendation.
3: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
2: Will your business be the answer?
3: Or the one that got left behind?
2: The future of search has already started.
3: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
2: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: कॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
6: परंपरा भी बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउस लो TW31QT। कॉल करें 07487-687-885।
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे 300

0: £50 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767627।
5: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
6: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
7: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: They certainly are, and they're also very pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. So for the most competitive Dubai deals, call Southall Travel on 0208 574 8410. And don't forget, they are at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Vihed. Like our gold.
3: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery shelled beast from the undergrowth. But around one in five young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected.
4: So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kids-tests.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, क्रिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.

0: Mamster गोलगप्पे अते गोलगप्पियां दा पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान. देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
7: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a देसी तड़का is total risk, है ना?
8: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in चार मजेदार flavors.
7: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
9: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of August and get 600. Off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
11: This is Sandy Shah on Gold Drive.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: 8823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: सितंबर महीना में हसन और डबल धमाको फरी आवी रहे छे। साउथ लंडन अने ल्यूटन मा टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो, इल्फर्ड। अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी,
3: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-50615।
4: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
5: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुन रहे हैं गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह। ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
0: London walo, dhyan se sun lo ke furniture ki dhamakedar flash. सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
4: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
5: भारतीय विद्या भवन प्राउडली प्रेजेंट्स समर शोकेस 2026, अ स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस एट द हैरो स्कूल। जॉइन अस ऑन सैटरडे 8th ऑगस्ट फ्रॉम 3 PM फॉर एन अनफॉरगेटेबल आफ्टरनून ऑफ आर्टिस्टिक एक्सलेंस। बुक नाउ एट bhavan.net और कॉल 0207-381-3086। भारतीय विद्या भवन समर शोकेस 2026, गेट योर टिकट्स टुडे।
6: रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो नेटवर्क।

0: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected।
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444-24-hour line।
5: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
7: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
10: Hey there, main hu Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baate, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: वेल, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। साथ में मनाएंगे आप और हम थ्रिलिंग थर्सडे शाम 7 से 10 बजे तक। पूछे आप सबसे कैसे हैं, आप सब बढ़िया है ना, क्योंकि हम तो बड़े बढ़िया हैं। और जिस तरीके से हमारे रजार फिगर्स आए, एक तो तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आप सब जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जितना प्यार दुलार लाड़ आप हमें दे रहे हैं उसके लिए तो आई नो थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसके अलावा और कुछ अभी आता भी नहीं है। और हमारे कार्यक्रम के द्वारा हम आपको अपना लाड़ प्यार दुलार संगीत सुना सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स आ रहे हैं। एंड इस आवर का आगाज हमने किया था दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, सत्ते पे सत्ता, दोनों ही बड़े ही फैंटास्टिक ट्रैक्स थे। नेक्स्ट ट्रैक इससे भी बढ़िया होने वाला है, वॉल्यूम अप रखना है, जरूर रखिएगा। हमेशा की तरह सवाल पूछूंगी, यस थियोरी लाई हूँ, यस ऑल होमवर्क डन फ्रॉम माई साइड। ओके, तो अभी बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं अपने घर पे लौट रहे होंगे, ट्रैफिक में होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, ठीक है, आप घर पे जाके इसका जवाब दे सकते हैं। एक घंटा पूरा भी ये सवाल चलने वाला है। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि भाई ट्रैफिक में ना तीन भांति के लोग, मतलब तीन प्रकार के लोग हमें दिखते हैं। उसमें से पहले होते हैं सिग्नल तोड़ने वाले, दूसरे होते हैं रॉन्ग साइड वाले, और तीसरे होते हैं पता नहीं क्यों अनवांटेडली हॉन्किंग करेंगे। मतलब ज़रूरत ही नहीं है यार, ट्रैफिक में पता है सामने वाली गाड़ी हिल नहीं रही है, पीछे वाली अभी कहाँ हिलेगी, बट स्टिल। सो इन तीनों में से आपको कौन से ज़्यादा लोग इरिटेट करते हैं, सिग्नल तोड़ने वाले, रॉन्ग साइड से आने वाले, या हॉर्न बजाने वाले? चॉइस है आपका। देखो ना, मैंने तीन ऑप्शंस दिए हैं आप सभी को। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपए एंड 65 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's.

0: This is Ash Winnie on Like a Gold. This part of the show is brought to you by Durandar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
3: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
4: ए तमे स्त्री हमने ऐसे रहे पुरुषों नाम खोटा होगो वालो बंद करो।
2: Comedy King निमेशा अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। Super Hit गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान माँ। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन माँ। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931 534 270। नाटक नु नाम याद रखो।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर UK पर जाएं।
7: Nigel's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Nigel's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel at all protected.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
5: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
7: लाइक अ गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
9: यादों की बारात.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:32, इट्स 7:32। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। लव मैरिज विच वॉज रिलीज्ड इन 1959, उस फिल्म से लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाया ये गीत जो आपको विंटेज की झलक कहीं ना कहीं दे देता है। एंड अब इस टाइम पर आपको सुनाते हैं हम कोई लाइफ थियरी। आज की थियरी द सक्सेस थियरी, नाम से इंटरेस्टिंग लग रही है ना। तो एक छोटी सी कहानी इससे रिलेटेड। एक बार एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा था, तो उसके पास जो कुल्हाड़ी थी, जो एक्स था, उससे वो सुबह से शाम तक काम किए जा रहा था। शाम के 4 बजने आए और वो पेड़ कटा नहीं था, तो वहीं पे दूसरा उसका एक दोस्त वो भी लकड़ी काट रहा था और उसके जो पेड़ है वो कट रहे थे। उसने आके इससे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं अभी ये काम कंप्लीट करूँगा, उसके सिवा मैं आराम नहीं करूँगा। वो कहता है अच्छा ठीक है, ये तो पेड़ तो कटा नहीं, तुम तो सुबह से लगे हो। तो कहता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, हो जाएगा। फिर उसका दोस्त कहता है एक काम करो, जाके अपनी कुल्हाड़ी जो है इसे ज़रा शार्प बना के लाए, या अगर जब तुम इसको शार्प बना के लाओगे तो हो सकता है कि ये पेड़ जो है ये जल्दी कट जाए, जाओ इसको ज़रा तेज़ करके लाओ, इसकी धार ज़रा तेज़ कर लो। फिर भी वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो काम करना है, मेरे पास में टाइम नहीं है। और शाम बीत जाती है, फिर भी वो पेड़ नहीं कटता है एंड वो आदमी निराश होकर अपने घर पे चला जाता है। बाकी सारे जो मज़दूर होते हैं उनके पेड़ कटते रहते हैं। अब यहाँ पे जो बाकी के मजदूर हैं उन्होंने अपनी जो कुल्हाड़ी है उसे बीच बीच में जाके उसकी जो शार्पनेस है उसे उस पर काम करके वो लेके आ रहे थे बार बार। अब इसका हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना। आप और हम भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सभी मेहनत करते रहते हैं, हमारे जो टाइप के जॉब्स हैं जहाँ पर भी जिस किसी फील्ड में हैं हम सभी खूब मेहनत करते हैं और उसमें बिज़ी रहते हैं। लेकिन क्या आप प्रोडक्टिव हैं? क्योंकि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड स्मार्टनेस लाना भी बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशंस करना, नई स्किल सीखना, अपने जो पॉइंट्स जहाँ पे आपको फीडबैक दिया गया है कि भाई इसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो उस पे ज़रा काम करो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जब किसी इंसान के ध्यान में आता है कि हाउ आई नीड टू इम्प्रूव, और वो अपना ईगो बीच में नहीं लाता लेकिन मेहनत करता है एंड स्मार्टली वर्क करता है, तो उसके लिए सक्सेस दूर नहीं रहता। जैसे कि उस आदमी के दोस्त जिन्होंने अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ जो हैं उसे शार्प करके लाई थी और अपना काम कंप्लीट किया था। ज़रूरी नहीं कि पूरे 7 दिन आप काम करते रहे और उसमें बिजी रहे, 3 दिन ही काम कर लीजिए हफ्ते में से, लेकिन प्रोडक्टिव रहिए और इतना स्मार्टली काम करिए कि 7 दिन में इंसान जो पैसा कमाए शायद आप 3 दिन में कमा लो। सक्सेस, इसकी परिभाषा हर किसी की अलग अलग है। आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं डिसाइड आप करेंगे, क्योंकि लाइफ है आपकी। कैसी लगी आज की थियरी ज़रूर बताइएगा।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The Evening Show with Ashwini.
3: फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
4: Leicester Miller is back.
5: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
4: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
5: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
9: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
10: बीकानेर वाला परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 07795181001
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
13: बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई
14: पवन जी मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं
15: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
16: भाई निकाल माइक
17: भाई माई के पिया कितना सुंदर
6: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV
0: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan Cool music for a super hot summertime. On Laika Gold.
18: Ye hai Laika Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.13 इंडियन रुपी, 373.52 पाकिस्तानी रुपी, 451.79 श्रीलंकन रुपी, 166.52 बांग्लादेशी टाका, 88.46 अफगान अफगानी, 173.15 केनियन शिलिंग, 1.34 यूएस डॉलर, 63.18 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £101.54 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: भाई शर्मिली फिल्म से आप सभी को लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज में आज मदहोश हुआ जाए ये गीत सुनाया. आप सबसे मैंने सवाल पूछा कि कौन से टाइप ऑफ लोग आपको इरिटेट करते हैं. क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक में कौन से टाइप ऑफ लोग, इन ट्रैफिक हाँ, नहीं तो आप कहो कि अश्विनी रुको हमारे पास लंबी लिस्ट है. ना ना, इट्स अबाउट ट्रैफिक. सो द पनिशर, जो हर किसी को लेसन सिखाना चाहते हैं. द नो इट ऑल, जिनको पता है कि हम जो हैं धुरंधर हैं व्हेन इट कम्स टू जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं. फिलोसोफर टाइप लोग, जिनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहे हैं, आराम से पेशेंटली जाते हैं. द अवॉइडर, कि भाई जो जिप जैप अपनी गाड़ियाँ चाहे जिस लेन में डाल दें. एंड द एस्केप, एस्केपी जो लोग होते हैं वो जोर से म्यूजिक लगा के बैठते हैं, जिससे अभी कुछ लोग बैठे होंगे, टू एस्केप ऑल द बाहर का केओस.
0: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini on Like a Gold.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital, Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai. Start to

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Bharti Vidya Bhavan proudly presents Summer Showcase 2026, a spectacular celebration of Indian classical music and dance at the Harrow School. Join us on Saturday, 8th August from 3 p.m. for an unforgettable afternoon of artistic excellence. Book now at bhavan.net or call 0207-381-3086. Bharti Vidya Bhavan Summer Showcase 2026. Get your tickets today.
2: Radio partners like a radio network.
3: London, Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika.
4: Hello re, hello re, hello re, hello.
3: Or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Saturday, 3rd October, 7 p.m. Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: वेलकम, दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. क्या बात है, आशिकी से शुरू किया हमने ये सेकंड आवर एंड उसके बाद में मेलोडियस ट्रैक. आई जस्ट लव दिस ट्रैक, सुरेश वाडकर एंड लता मंगेशकर की आवाज में पथचल सावन एंड दिस वॉज फ्रॉम द फिल्म सिंदूर. क्या बात है, ऐसे मेलोडियस ट्रैक सुनो ना तो एकदम ऐसे फ्रेश हो जाते हैं हम. सेकेंड आवर है तो इस सेकेंड आवर में गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड वो सुनेंगे. इट्स थर्सडे तो मेरी लिखी हुई छोटी सी एक कविता आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ. आप ट्रैफिक में फंसे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठ के इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग जो भी कर रहे हैं, फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से हम लोग बन जाते हैं नंबर वन कमर्शियल रेडियो. तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू.
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी. Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
2: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
1: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
3: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
4: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 31 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक आपने और हमने सुना, एंड दैट वाज फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी विच वाज रिलीज्ड इन 1980। आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस, आप लोगों का लाड़ प्यार दुलार और साथ में आप लोगों की प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें जब आप मुझसे शेयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, आई एक्चुअली फील अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। एंड ऐसे भी हम आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं भाई, देखो ना, रेडियो के द्वारा आपके घर में आ ही चुके हैं। सो व्हाट्स देयर ऑन द प्लेट, बिल्कुल अगर पिक्चर्स भेजना चाहते हैं भेजिएगा। आप खाना शुरू करें उसके पहले जो सजीवी थाली होती है उसके पिक्चर्स जरूर भेज सकते हैं। राइट, सो इमोशन ऑफ द डे यानी थ्रिलिंग थर्सडे मना रहे हैं आप और हम, एंड उसके लिए आज मैंने चूज किया है पाकीज़ा फिल्म से ये मेलोडीज ट्रैक।
0: लाइका गोल्ड, मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: थ्रिलिंग थर्सडे के लिए पाकीज़ा फिल्म से सुनाया आप सभी को चलो दिलदार चलो। मेलोडीज ट्रैक्स जब आते हैं, जब उन्हें सुनते हैं और हमारे चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आती है तो पैसा वसूल हो जाता है ना। थ्रिलिंग थर्सडे था आज का दिन एंड उसका ये फीचर राइट। सो जरा बात हो जाए पोएम के बारे में राइट। इट्स थर्सडे एंड सेकेंड आवर में अपनी लिखी हुई एक पोएम आपको सुनाती रहती हूँ। आज की पोएम है बहुत छोटी एंड दिस पोएम आई रोट फॉर ऑल माई फ्रेंड्स जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए मैंने लिखी थी। अब इसमें समझ लीजिए कि आप लोग भी इंक्लूडेड हैं, बिकॉज देखिए ना हमारा लाइका गोल्ड और हमारा लाइका रेडियो, हमारे दोनों भी रेडियोज़ जो हैं वो टॉप पे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ यू। सो ये पोएम जो है आप सबको डेडिकेट करती हूँ मैं। बुलंदी को छूना, बुलंदी को छूने का देखा है सपना, इसमें साथ दे रहा कोई अपना। बुलंदी को छूने का देखा है सपना, इसमें साथ दे रहा है कोई अपना। अपनों से नाते खून के नहीं होते, मेरे पास अपने नहीं, ऐसा बहुत लोग कहते। अपना बनाने के लिए नहीं चाहिए कोई दौलत, है ना? अपना बनाने के लिए नहीं चाहिए कोई दौलत, ये तो बन जाते हैं अपने पाकर प्यार की सोबत। अपनापन पाया मैंने दोस्तों की दोस्ती में, यकीन और प्यार में। अपनापन पाया मैंने दोस्तों की दोस्ती में, यकीन और प्यार में। और अगर ये अपने ना होते तो बुलंदी को छूने के हमने भी सपने ना देखे होते। सो ये पोयम आज आपके लिए भी डेडिकेटेड आई। बड़ी छोटी सी पोयम थी, कई बार छोटा पैकेज बड़ा धमाल होता है, वैसे ही है। सो ये सब आपके लिए हैं, आप लोगों के साथ के लिए। नेक्स्ट ट्रैक जो सुनेंगे उसके पहले थोड़ी सी गपशप और हो जाएगी। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में कश्मीर की कली से आने वाला है अगला ट्रैक आप सबके लिए।
3: This is like a gold.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: एपिसोड नंबर 28 आ चुका है। इस एस्ट्रोलॉजी रियल और अ स्कैम? दिस इंटेंस एपिसोड अनकवर्स हैव एस्ट्रोलॉजर्स एंड पाम रीडर्स बीन स्कैमिंग अस। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
5: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड।
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
0: rice.
7: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
8: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.17 इंडियन रुपी, 373.41 पाकिस्तानी रुपी, 451.63 श्रीलंकन रुपी, 166.46 बांग्लादेशी टाका, 88.43 अफगान अफगानी, 172.14 केनियन शिलिंग, 1.34 US डॉलर्स, 63.12 मॉरिशियन रुपी.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £101.56 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. 6th ऑफ अगस्त थर्सडे, यानी कि हमारे लिए तो थ्रिलिंग थर्सडे कल होगा, फैंटास्टिक फ्राइडे ये. कल और भी डांस मस्ती होगी तो खाना वाना खा के बैठेगा. हाँ, अभी कहीं नहीं जा रही, अभी तो सेकेंड आवर ही खत्म हो रहा है, लेकिन उसके पहले जरा बात हो जाए गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई बात करे ना करे इस शो पे जरूर बात होती है. सो इन थाईलैंड रिसाइकल बिलबोर्ड्स हैव बिकम शेल्टर्स फॉर स्ट्रे डॉग्स. और ये पिक्चर इतनी प्यारी है ना, वो बिलबोर्ड्स के नीचे इतने अच्छे से प्यार से सारे स्ट्रीट डॉग्स बैठे हैं, जो स्ट्रे डॉग्स थे बैठे हैं. दिस इज सो वेरी थॉटफुल. ब्राजील एलिमिनेट्स वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू बेबी एंड अचीव्स द लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन रिसेंट ईयर्स. फैंटास्टिक. In Scotland, Scotland has become the first country in the world to make hygiene products including tampons and pads free for everyone. Fantastic. France bans short domestic flights where trains exist to cut emissions and fight climate change. Again, jo koi bhi idea ke saath mein aaya hoga na, hats off and salute to that person. Norway has reached a deforestation rate close to zero. This is fantastic. And the president of Philippines has banned child marriage. Itni sari achhi news sunne ke baad mein to hume lagta hai ki wow, the world is changing. Aur achhi cheez hi bhi hai. Is hour ka aakhri geet aapko thoda ghuma fira ke laate hain around the world. Mukesh ji aur Sharda ji ki awaaz mein duniya ki sair kar lo. Aur yahi geet hume le chalega 9 o'clock ki news ki taraf. Uske baad ghazal ya qawwali main kya sunane wali.
0: Non-stop classics. Classics. Like a gold. This is Ash Winnie on Leica Gold.
2: Leica Gold.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
3: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
6: Dad.
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
11: फोन 020-8574-8410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
12: The Evening Show with Ashwini.
2: Leica Gold.
0: Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: वेलकम. दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है. 9:14. इट्स 14 minutes past 9. एंड आखिरी आवर में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम सोचते हैं कि टाइम इतना जल्दी कैसे निकल गया. भाई जैसे आया था वैसे निकल गया. तो इस आवर का आगाज हमने किया था, दिल तो पागल है, इस फिल्म से लिया था हमने ढोल ना. सेकंड, क्या मेलोडियस ट्रैक है ना ये मोहब्बत. एक्चुअली मैंने भी ये गीत कितने टाइम बाद सुना. आज जब मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर रही थी, आई वाज लाइक दिस सॉन्ग हैज टू बी देयर. 1985 में मोहब्बत रिलीज हुई थी, उसी फिल्म से आप सबको सुनाया किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत. नेक्स्ट ट्रैक चांदनी के जितने भी दीवाने और दीवानियाँ हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला गीत आप सबको बेहद पसंद आएगा.
1: Ashwin SBI, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 65 पैसे. And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:25, इट्स 25 minutes past 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मजा आ गया नए गीत सुन के. तलाश फिल्म से सुनाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में दे सुपर मेलोडियस ट्रैक पलकों के पीछे से. बस कुछ गीत ही ऐसे होते हैं कि सुन लो एंड यू आर लाइक मिल गई खुशी, है ना. मोहब्बत फिल्म का गीत भी वैसे ही था, थोड़ा ज़्यादा उसमें म्यूजिकली थोड़ा फास्ट भी रहता है वो वाला सॉन्ग, बट दिस सॉन्ग इज़ लाइक आने दो बस सुनने दो. चलिए ओके, तो आर्टिस्ट ऑफ द वीक में विश्वजीत की फिल्मों के गीत आपको सुना रहे हैं. उन्हीं की फिल्म का अगला गीत आप सबके लिए मैं पेश कर रही हूँ मेरे सनम से आशा भोसले की आवाज में. गेस कर लीजिए कौन सा होगा.
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Dad.
6: What's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
10: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: 1 pound ke badle aapko milega 128.11 Indian rupee, 373.39 Pakistani rupee, 451.69 Sri Lankan rupee, 166.46 Bangladeshi taka, 88.48 Afghan Afghani, 173.08 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.14 Mauritian rupee.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The LIKA Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £101.46 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं एक बार टाइम क्या हुआ है। इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। गोल्ड नाइट सर्विस हमारी वन नाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। सुबह सवेरे आएगी हमारी प्यारी प्यारी काजल, उनका साथ दीजिएगा। अब आज गजल या कवाली, मैं क्या सुनाने वाली, तो मैं सुना रही हूँ आपको गजल आशा भोसले की आवाज में, उमराव जान से, एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस। दिल चीज क्या है, एंड द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी प्यार जिंदगी है, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से ये गीत आप सबके लिए लेके आई हूँ। बस कल है फ्राइडे, यानी सप्ताह का अंत हमारे लिए, वीकेंड क्रू आ जाएगा आपके स्वागत के लिए। मैं मिलूंगी आपको अगले सप्ताह, लेकिन कल आ रही हूँ बाबा, ये सब मैं कल बोलने वाली हूँ। आज इतना ही कहूँगी भाई, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, अगर किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें बोलिए प्यार दो, प्यार लो प्लीज़। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, कम्युनिकेट करो। आपके दिल और आपके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आता है, तो कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे तो चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड रहेगी। प्यारे प्यारे लोग हैं आप, तो आई एम श्योर कि आप लोग पावर का यूज़ तो नहीं करते होंगे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, और आप तो हमारी म्यूजिकल फैमिली हैं। ऑन दैट नोट आई हैव टू से कल फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए तैयार रहेगा, खाना वाना खा लीजिएगा, क्योंकि आप और हम फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे विद ढेर सारे मस्ती भरे ढिंचक गीत भी होते हैं, म्यूजिकल गीत भी होते हैं, पैर थरकाने वाले गीत होते हैं, तो कैलोरीज बर्न करने के लिए हो जाइएगा तैयार। आरजे अश्विनी कल बन जाएगी डीजे अश्विनी, खूब डांस मस्ती मजा होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, हियर आई से बाय बाय।
0: ये है लाइका गोल्ड।
3: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।
0: गजल।

0: तारे
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो

0: भोले भाले ललुआ बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है वार।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत कहीं